0: के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: कार्यक्रमातलं हे गीत आहे आनंद बक्षी यांचं मर्यादा या चित्रपटामधलं। ऐकूया लता मंगेशकर आणि किशोर कुमार यांच्या आवाजात। गीताला संगीत दिलं आहे कल्याणजी आनंदजी यांनी।
3: अरे
4: चुपके से दिल दे दे
3: नहीं ते
4: नहीं ते

0: रेडिओ विश्वास
1: टाइम चेक
0: टाइम चेक।
2: सकाळचे 10 वाजले आहेत आणि तुम्ही ऐकताय रेडिओ विश्वास, तुमचं जगणं तुमचा आवाज।
3: This hour is brought to you by
4: Sony Gifts, exclusive range of crockery, appliances and presentation articles. Sony Gifts, Shalimar.
3: This hour is brought to you by
5: Vishwas Cooperative Bank.
6: Sanchayat Samruddhi.
7: नमस्कार नाशिककर, मी विश्वास ठाकूर बोलतोय आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ, तुमचं जगणं तुमचा आवाज।
8: आता रेडिओ विश्वास ऐका जगभरात कुठेही आणि कधीही, त्यासाठी प्ले स्टोअर वरून किंवा ऍप स्टोअर वरून रेडिओ विश्वास हे ऍप डाउनलोड करा आणि सुमधुर संगीताबरोबरच आस्वाद घ्या दर्जेदार कार्यक्रमांचा। रेडिओ विश्वास, अभिजात संस्कृतीचा सुमधुर आवाज।
9: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
10: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
9: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
11: कार्यक्रमात आता ऐकूयात ग दि माडगुळकर यांचं गीत सुवासिनी या चित्रपटामधलं, आशा भोसले यांच्या

0: बेटी तुम्हारी,
1: ले जाएंगे हम बेटी तुम्हारी,
0: आएंगे घोड़े पे होके सवार।

अबैदुल्लाह हलीमी की है, छोटी बहर की गजल है। अक्सर आपने मुझसे सुनी होंगी, छोटी बहर की गजलें ज़्यादा गाता हूँ इसलिए कि ज़रा मुश्किल पसंद थोड़ा सा जेन है, जो ना चीज़ तैयार हो सके उसको तैयार करने की कोशिश करता हूँ।

0: वाढवायचंय, पण मोठी रक्कम कुठून आणू?
1: विश्वास बँकेचे डेली कलेक्शन व्यवसाय कर्ज घ्या.
0: हप्ता कसा भरायचा?
1: अगदी सोपे. रुपये 1,00,000 कर्जासाठी फक्त रुपये 108 रोज.
0: रुपये 5,00,000 असुरक्षित कर्ज, मुदत 3 वर्ष. भाजी विक्रेते, फेरीवाले, छोटे दुकानदार आणि रोजच्या रोकड व्यवहाराचा व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी खास योजना. अधिक माहितीसाठी जवळच्या शाखेला भेट द्या.
2: सूरज डूबते डूबते गर्म कोयले की तरह डूब गया और बुझ गया. वो घर से भाग आई थी उस रिश्ते से बचने के लिए जो बिन चाहे उसके दामन से बांधा जा रहा था. उसने संदेशा भिजवाया तो था उस पुल पर मिलने के लिए जो दो किनारों को जोड़ता है. हवा जब कोहरे को हिलोरा देती तो पूरा पुल झूल जाता. जिंदगी के दोनों सिरे छू लेता, इब्तदा और इंतहा, शुरुआत और आखिर. इसी जगह से उनके रिश्ते की इब्तदा हुई थी. माजी से एक आवाज आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रही थी.

0: रजतं लंबोदरं प्रियं अत्यंत पावनम्
1: अक्षयं लभते पुण्यं दारिद्र्यं नैव जायते
0: बाप्पाला चांदी अतिप्रिय आहे
1: आणि म्हणून ती शुद्ध हवी
0: बाप्पासाठी चांदीचे पूजा साहित्य
1: आणि शोभिवंत दागिन्यांसाठी
0: विश्वास नाशिककरांचा
1: अडावतकर ज्वेलर्स अगोरा कॉम्प्लेक्स कॅनडा कॉर्नर नासे
2: आदमी बुलबुला है पानी का और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है डूबता भी है फिर उभरता है फिर से बहता है न समंदर निगल सका इसको न तवारीख तोड़ पाई है वक्त की मौज पर सदा बहता है

चटक मटक एक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी छोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ने पकड़ी बांह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा

0: याने याने याने प्यार हो गया।
1: हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना।
0: याने याने याने प्यार हो

थे वो थी और समर रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, यानी यानी यानी प्यार हो गए।

धक धक धक धड़के दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह हम थे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना अन्य अन्य अन्य प्यार हो गए।

0: मौका मिले तो भगवान भेज खाए। हाय हाय हाय हाय। कुछ लोगों का धंधा हुआ है
1: क्या?
0: मंदिर में जूते

मैं सुधर गई थी कि ना अब तुम कभी आओगे और न मुझे कभी बुलाओगे, पर तुमने मुझे बुला लिया। तुम मुझे नर्तकी नहीं समझते हो ना, धन्य हो गोपाल, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे अपनी नजर से देखा है, समाज की नजरों से नहीं देखा। कितने अच्छे हो तुम, ये चाहता है अपने आप को तुम्हारे चरणों पर निछावर कर दूं। सुना तुमने, हम दोनों की बात गांव भर में फैल गई है, तुम्हें तो मालूम भी नहीं लोग हमारे बारे में कैसी ऐसी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुमसे और तुम्हें

तुमने अपनी आवाज बाली को पार, तुम्हारे खोए हुए स्वर्ग में वापस मिली। हाँ, आज देवी माँ से कुछ और भी मांगती थी। गाओ गोपाल गाओ, इस नौजीवन की पसंद बाहर का।

पर हम दम है अगर हम तो तुम्हें हम क्या है, मेरे होते हुए ये सांस है क्यों सर्द तेरा, ये जहां गर्द